विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा आज से उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देश विदेश के लोगों को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made four major improvements in this new beta version. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on the 15th of August. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. US military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. Air defenses were activated in Tehran early this morning, and residents were awoken by a loud explosion. It came after Iran claimed it has struck U.S. military targets in the region, including in Bahrain and Kuwait. The IMD has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal and Odisha today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Assam, Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttarakhand for the day. In Delhi, the Met Department has forecast for hot and humid conditions with partly cloudy sky during the day. Heat wave conditions are also expected at isolated places over Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. Two-time Olympic medalist PV Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yu of China in straight games and stormed into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. Sindhu registered a commanding 21-16-21-14 win over Chinese shuttler in their second round contest. And in FIFA World Cup football, defending champions Argentina advanced to the final after defeating England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA last night. Now Argentina will play against Spain in the final on Sunday night. And that is the end of this news bulletin.
1: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Chitra Puri in Odisha, for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majitia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
2: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko Mahaprabhu Jagannath Ji ke Dham, Odisha ke Pavan Kshetra, पुरी लिए चलते हैं जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखाल सुने के विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में. आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले.
3: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ. आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक यहां उपस्थित हैं. मंदिर प्रशासन की जो कार्यालय है उसके छत पर हमें इस बूथ में हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने तीन सुसज्जित रथों पर ठाकुरों के हम दर्शन करेंगे और सामने मेरे श्री मंदिर है. श्री मंदिर की शिखर पर नील चक्र है, नील चक्र से बंधा हुआ पतिता पावन ध्वज है और यह समूचा दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन लग रहा है. मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, श्रोताओं को, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अभी तक जो मंदिर की अंदर की जो नीतियाँ थी भगवान के पूजा की, उन्हें सुबह जगाकर उन्हें रात के वस्त्र को उतारकर नए वस्त्रों से सजाकर उनकी जो दिनचर्या होती है वो सारी नीतियां समापन होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक रथों पर उन्हें लाया जा रहा है. सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन महाराज, उन्हें रथों पर लाया जाता है. जैसे कोई बहुत ही गणमान्य व्यक्ति किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उनके सुरक्षा अधिकारी

0: वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, और संतुष्ट होने के बाद वो खबर भेजते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद वो गणमान्य व्यक्ति वहाँ पधारते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सुरक्षा अधिकारी हैं। सबसे पहले उन्हें सेवक लोग अपने दोनों हाथों से उचक कर आगे पीछे झूला झुलाते हुए लाते हैं, और तीन रथों में बीच का जो रथ है देवी सुभद्रा जी का रथ, जिसे देवदलन या दर्पदलन कहा जाता है, काले और लाल वस्त्र से आच्छादित बहुत ही सुंदर कारुकार्य है, बहुत ही सुदृश्य है, उस रथ पर उन्हें विराजमान किया जाता है सुदर्शन महाराज को। उसके बाद आते हैं बड़े भाई दाऊ जी बलभद्र जी। बलभद्र जी उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को पकड़कर पीछे रेशम की डोरी से बांधकर सेवक लोग उन्हें झुलाते झुला झुलाते रथ पर विराजमान करवाते हैं। ये दोनों अभी उपस्थित हो चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है श्री मंदिर के भीतर से ठाकुरों को बाहर बड़दांड पर लाना और रथों पर विराजमान करवाना, इस प्रक्रिया को यहाँ की जो श्री मंदिर की जो भाषा है उसे पहंडी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहंडी शब्द जो है वो संस्कृत के पदहुंडन शब्द से आया है। पदहुंडन मतलब एक एक कदम। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री बलभद्र जी को, माता सुभद्रा को उस पहंडी प्रक्रिया में लाना जाता है। देवी सुभद्रा उनके हाथ पांव नहीं है, तो उन्हें सेवक लोग अपने कंधों पर उचक कर लाते हैं, जिसे शून्य पहंडी कहा जाता है। वो सेवकों के कंधे पर सोते हुए आसमान की तरफ आसमान की तरफ अपना मुंह करके उन्हें लाया जाता है, और बीच वाले रथ में उन्हें विराजमान करवाया जाता है। पहले सुदर्शन महाराज, फिर बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। बलभद्र जी का रथ जो है वो लाल और हरे रंग के वस्त्र से आच्छादित है, उसका नाम है तालध्वज। और अब सभी बहुत ही आतुर होकर देख रहे हैं कब अपने इष्ट देव जगत के नाथ कल्याणकारी भगवान श्री जगन्नाथ पधारेंगे। जैसी कि हमें सूचना मिली है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की पहंडी शुरू हो चुकी है। घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ सभी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, धुआंधार बारिश को नज़रअंदाज करके सभी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बड़दांड में। ये बहुत ही रोचक दृश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे, रत्न सिंहासन को त्याग कर रथ पर बने काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होंगे, दोनों हाथ फैलाए अपने जो भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को वो आलिंगन करने के लिए आतुर होंगे, और भक्त एक नज़र उन्हें देखने के लिए तरसता होगा। ये बहुत ही अद्भुत जो समारोह है रथ यात्रा का। ऐसी स्थिति में मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही पुरानी कहावत है, दोले चू दोलो गोविंद रथे तू वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात दोल पूर्णिमा जो होली का समय है, तब भगवान को दोल वेदी पर, दोल मंडप पर, स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप पर, और जो नौका विहार करते हैं वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को, रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने पर मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पा लेता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा, अंग्रेजी में वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जय जगन्नाथ।
1: थैंक यू मजीठिया जी। माय ब्रदर कमेंटेटर, आई एम रजनीकांत नायक, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स

0: very honorable pride in our Lord or in the cult of Jagannatha, which is inextricably mixed with Odia pride. And this rolls on unabated even today. Because every Odia, as I know, is prepared to swear by the name of the Lord Jagannath. And for each of them, it can be said that Ashada is the month when the clouds rumble in the sky. In fact, they have been rumbling a bit more since yesterday, and it is predicted that there will be rains for the coming 2 days also. And with this, and promising you to speak more, I am handing over the mic to my fellow commentator, Sri Mohan Majithia ji, to continue with the commentary with Hindi.
1: Dhanyavad, Professor Naik. Varsh bhar Mahaprabhu Sri Jagannath ji Sri Mandir ke bhitar Ratn Singhasan par virajman hote hain aur bhakton ko apne isht dev ke darshan hetu mandir ke bhitar jana hota hai. Bas yahi ek aisa din hai jab Bhagwan Jagannath swayam apne bhakton se milne ke liye aatur ho jate hain. इसीलिए रथ यात्रा में शामिल होने की इच्छा लेकर देश के कोने कोने से तथा विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी आ पहुंचते हैं. वैसे तो भारत के कई छोटे बड़े शहरों में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पित मंदिर हैं और उन शहरों में रथ यात्रा का आयोजन भी होता है, परंतु चार धामों में श्रेष्ठ ये श्री क्षेत्र या पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि पूरी शहर, यहाँ की जो रथ यात्रा है ये देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपनी ओर. कोई भी भक्त एक ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता जहाँ उसे अपने इष्ट देव के, अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन उसके सामने बड़दांड पर मिल जाएं. बड़दांड यानी कि श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का करीब 3 मील का सीधा रास्ता, जिस रास्ते तीनों रथ यहाँ से खींचे जाएंगे एक के बाद एक. सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाएगा, फिर देवी सुभद्रा जी का, और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े आराम से बड़े भाई को और बहन को आगे भेजकर फिर बाद में अंत में वो आएंगे. वो अपने मन के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं. जब रथ खींचे जाएंगे तब करीब करीब 3 बजे, 3:30 बजे का समय जो है उस समय खींचे जाएंगे. अभी हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि बड़े भाई दाऊ जी महाराज वो अपने ताल ध्वज रथ पर विराजमान हो चुके हैं. माता सुभद्रा देवदलन रथ पर विराजमान हो चुकी हैं और उनके रथ में सुरक्षा अधिकारी के रूप में चक्रराज सुदर्शन भी मौजूद हैं. इंतजार है तो बस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का. किसी को चकानयन के दर्शन की इच्छा होती है तो किसी को रथ खींचने की लालसा, और अगर रथ खींच न सके तो रथ की पवित्र रस्सी को छू भर लेने से जो आत्मसंतोष मिलता है उसी से ही भक्त प्रसन्न हो जाता है. भक्त और भगवान के मिलन का ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है. महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाते हैं. बड़े बड़े चक्राकार नयन जिसकी पलक नहीं पड़ती, प्रभु जी के ऐसे रूप को देखकर भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का लहर उठने लगते हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छंद याद आ रहा है. बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनु बानी बकता बड़ जोगी. अर्थात निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कई प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुख के जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं, और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं. ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना स्वाभाविक बात है. जैसा कि मैंने पहले कहा, स्कंद पुराण में वर्णित है, रथेतु वामन

0: concert of the mythical king Indradumna, to whom goes the credit of having made the gods from out of the log of wood which was floating in the ocean. That is why he is called, I mean Lord Jagannatha is called Daru Devata. All the lords are Daru Devatas here. And since Indradumna is the king who literally made it possible for Jagannatha to come in his present avatar. In fact, when we talk of the avatars, there are four yugas which are talked about. In the Satya Yuga, there was Nrsimha or Vishnu. While in the Treta, there was Lord Sri Rama. In the Dwapara, it was Lord Sri Krishna. While in the Kali, it is Lord Jagannatha. So as I was telling you, my dear sisters and brothers, the occasion turns unbelievably poetic. For everyone here does strongly believe that to every desperate call from the below, through the parched lands, the mute hills and dales, for mercy, suffering as everyone does from a torturous summer sun, the benign skies seem to open up on this pious day when the Asada clouds rumble and masses of heavy clouds come tossing and tumbling, pouring down divine benediction, as it were, in torrents of rain. In fact, we have been having sufficient rain since last evening, as I told you. And Lord Jagannatha comes cascading from his Niladri, or the Blue Mountain, to the lowliest of the lowly among us, because he is supposed to be in his Patita Pavana avatar. Patita Pavana means he is a savior of the lowliest of the lowly, savior of the fallen. And he proves once for all that God is not exclusive or remote, but he is accessible to human prayers, to the riches of man. In fact, that Godhead being accessible to humans is also the subject of matter of great classics like Prologue of Chaucer, the Iliad of Homer, the Odyssey of Homer, or even our very own Ramayana and Mahabharata. With this, I pass on the mic to my fellow commentator, Majithia ji, to continue the commentary in Hindi. Majithia ji.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. जैसा कि मैंने अभी श्रोताओं को बताया कि पौंडी प्रक्रिया से बड़े भाई बलभद्र, देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी को इंतज़ार है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का. और ऐसा लग रहा है मंदिर के भीतर कुछ हलचल हो रही है. कदाचित जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन से नीचे उतर आए हैं. मेरे सामने रथों के आगे कई तरह के भक्त अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो यहां से मैं देख पा रहा हूं. कुछ नृत्यांगनाएं ओडिशा की पारंपरिक नृत्य कला ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं. यही ओडिसी नृत्य वो जगन्नाथ जी को समर्पित करती हैं. कोई हनुमान जी का वेश धारण कर, कोई शिव जी का वेश धारण कर भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है. ये एक रस्सी से बना चक्र घुमा रहे हैं, जिसे बनाटी कहा जाता है. यहाँ की ये पारंपरिक कला है जिसको यहाँ ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं. इस प्रकार जो जिस भी कला में माहिर है, वो अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. अभी तक जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से बाहर आने की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है. बल्कि जो हमें लग रहा है, भक्तों में जो उत्साह लग रहा है, जय जगन्नाथ की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे. इतने में मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को सर पर एक सुंदर सा मुकुट नुमा टाहिया

0: पहनाया जाता है, यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे टाहिया कहते हैं। टाहिया एक बहुत ही सुंदर मुकुट है, बहुत ही पवित्र और पारंपरिक आभूषण होता है, जिसे रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ठाकुरों को पहनाया जाता है। मुख्य रूप से टाहिया सोल से बना होता है। सोल यानी एक प्रकार की प्राकृतिक घास जो बहुत ही हल्की और स्पंज जैसी मुलायम होती है। इसे छीलकर अंदर का सफ़ेद और चमकदार गुदा निकाला जाता है और उस गुदे से सुंदर कलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि सोल से बनी कमल की पंखुड़ियाँ, मोर के पंख के आकार की नक्काशी और सोल से ही बने कदम्ब के फूल टाहिया को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं। ये इतनी नाजुक और बारीक कारीगरी होती है कि इसे बनाने में कई दिन और कई कारीगरों को काफ़ी समय लगता है। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार टाहिया, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्री बीजे के दिन देवताओं को पहनाए जाते हैं। जब भगवान रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की ओर जाते हैं तब इसे बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनके सिर पर पहनाया जाता है, उन्हें सिर पर धारण कराया जाता है। लेकिन रथों तक आते आते उनके जो आतुर भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो टाहिया को खींचकर उससे एक टुकड़ा अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। भगवान भक्तों का ये जोश, ये उल्लास, ये उन्माद देकर स्वयं खुश होते हैं और ये कहते हैं कि चल आज तेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाए, ले जा मेरे टाहिया का एक अंश, उसे संभाल कर रख, तेरा मंगल हो। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान भक्त की इस मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ ही देर में लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे और अब आगे का हाल सुनाने के लिए प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से मैं अनुरोध करूंगा। रजनीकांत जी, जय श्री जगन्नाथ।
1: As I was telling you, this annual Yatra of the Lords entails mythology, history and folk belief of the rarest of rare cult, that is the cult of Jagannatha. In fact, there are so many books written on different rituals which are performed almost round the year in order to celebrate the different functions which are webbed round the worship of Lord Jagannatha, that it will not be possible to talk about all of them here at one go. But suffice it to say that the most adored and loved deity, that is Lord Jagannatha, happens to be a Lord whose inception itself is a triumph of human endeavor in its eternal search for redemption or fulfillment. And as my fellow commentator has been telling you, the Pahundi BJ, the process is on. The Lords come one by one. In fact, there are two types of Pahundis: Chhera Pahundi or Gothi Pahundi. Gothi Pahundi is said to be there when the Lord comes one after the other, while when they come back from their birthplace on the Bahuda journey, it is called Gothi Pahundi. So there are two types of Pahundis. Now the first phase of this Pahundi BJ is on, and this Pahundi is not complete because the Lord of the Lords, Jagannatha, is yet to climb his car. Yes, and the other Pahundi I was telling you is Dhadi Pahundi. I'm sorry, I called it Gothi Pahundi. Gothi Pahundi is on the reverse journey, while Dhadi Pahundi happens when the Lords come from the sacred altar or the bejeweled altar to climb their respective cars. And this, the Lord Purushottama, or the Purushottama Khetra as it is known, is full of mythological, antecedents. Goddess Lakshmi is supposed to have described it this way to Yamaraj. She says, I quote, "It resembles like a cone shape voluted towards the right hand side,

के शिखर पर बंधे इस पतिता पावन बाना को देखकर धन्य हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया है। तो पतिता पावन बाना यानी कि पतितों के उद्धार के लिए ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है। ये गाढ़े लाल या पीले रंग का होता है, इसका आकार त्रिकोणाकार होता है और इसके बीच श्वेत रंग से चंद्र और बिंदु उसमें बनाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर। मंदिर के शिखर पर से नील चक्र पर बंधा हुआ ये पतिता पावन ध्वज बहुत ही आकर्षण होता है। इसका प्रतिदिन संध्या समय पुराने ध्वज को नीचे उतारा जाता है और नया ध्वज बांधा जाता है। इस कार्य के लिए विशेष सेवक होते हैं जिन्हें गरुड़ सेवक कहा जाता है। ये गरुड़ सेवक यानी कि उनके इष्ट देव गरुड़ होते हैं। ये गरुड़ सेवक प्रतिदिन संध्या में नए ध्वज लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज बांधते हैं और जब मंदिर से शिखर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर की ओर पीठ करके नीचे उतरते हैं। ये परंपरा रही है, विशेष परंपरा नील चक्र पर बाना बांधने की और बांधकर उतरने की, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। 12वीं सदी में बना ये भगवान का मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। देश भर से विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें परंपरानुसार मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, इसीलिए शायद रथ यात्रा का ये अवसर है। भगवान पहले मानवीय लीला के अंतर्गत बीमार होते हैं और 15 दिनों तक वो दर्शन नहीं देते हैं अपने भक्तों को, फिर स्वस्थ होकर जड़ी बूटी और विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि से उनकी चिकित्सा होती है, फिर भगवान स्वस्थ होकर नव यौवन का भेष लेते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ पर विराजमान होकर श्री गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है श्री मंदिर की जो सामान्य परंपरा। प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसा एक अलौकिक ये अवसर होता है जब वो अपने भगवान को अपने सामने देख पाते हैं। ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भक्त सालबेग का। भक्त सालबेग जिसकी समाधि इसी बड़दांड में श्रीमंदिर से गुंडीचा जाते समय बीच में आती है। भक्त सालबेग वैसे यवन थे, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के हर प्रत्येक घर में आज भी उनके रचित उड़िया भजन गाए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। जैसा कि एक भजन है, आहे नीळ शैळ प्रबळ मत्त बारण मुआर त नळिनी बन कु कर दळन। एक कवि ने हिंदी में इसका अलग भावांतर किया, ऊपर नीला अंबर है नीचे सागर नीला, नील शैल के नील माधव अनोखी तेरी लीला, अनोखी तेरी लीला। इस समय अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु आतुर होकर श्री मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार की ओर देख रहे हैं, कब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उनके चक्राकार नयन देखकर मैं अपने आप को धन्य हो जाऊंगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, वरना फिर अगले वर्ष मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अगर मैं रथ की रस्सी को छू नहीं पाया, अगर रथ को खींच नहीं पाया तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये श्रद्धालु अभी भी आतुर होकर जय जगन्नाथ हरि बोल की गूंज कर रहे हैं और हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में एक अद्भुत तरंग उन्माद है। सभी बड़े आतुर होकर सिंह द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान अभी तक नहीं आए। वो अभी बड़े अभी भी वो बुला रहे हैं कि भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आओ, हमें दर्शन दो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। और

0: अभी तक हम इंतज़ार में हैं, आप सभी भी इंतज़ार में रहिए। अभी तक की जो जो यहाँ हमारे समक्ष जो घटा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब दूसरे चरण में दोपहर 3:10 में मैं फिर से आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक और मैं मोहन मजीठिया आपसे विदाई लेते हैं और आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को ले जाते हैं। चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। श्री जगन्नाथ जी की इसी रथ यात्रा के दूसरे भाग का आंखों देखा हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 3:10 से।
2: यू आर लिसनिंग टू द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द श्री जगन्नाथ Rath Yatra being celebrated at the Pavan Chhatra Puri, Odisha. Our commentators were Sri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English. The second phase of the live commentary of Sri Jagannath Rath Yatra will be broadcast from 3:10 PM onwards. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.

स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं।

0: आंगन
1: लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। तो स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कल्पना का प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों हर बार की तरह आज भी हम पूछने वाले हैं आपसे एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपके लिए ये है कि आपने अपने हाथों से कोई पौधा कब लगाया था और वो पौधा कौन सा था। तो आपके जो जवाब है उनकी हमें प्रतीक्षा है। आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर अपने उत्तर, और हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, वो है fmgoldga@gmail.com। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भेज दीजिए और तब तक सुनिए आप ये मीठा मीठा सा गीत प्यार किए जा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, आप पुकारते हो और हम घर आंगन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाते हैं। और आज मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको देना है। आज का प्रश्न मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कौन सा पौधा आपने अपने हाथों से लगाया था और वो किस चीज़ का पौधा था। तो ये आपको लिख भेजना है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर यानी जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से गुंडचा मंदिर तक नगर भ्रमण करते हैं। ये रथ यात्रा भगवान के भक्तों के बीच स्वयं आने का प्रतीक है। साथ ही यह उत्सव प्रेम, समानता, सेवा और लोक कल्याण का संदेश देती है। और कहते हैं कि जन सेवा में भी ईश्वर की सेवा होती है। तो आइए हम भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लें, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। और यदि आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर नई दिल्ली में 16 जुलाई से 27 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 12 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव यहां पर मनाया जाएगा। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। और भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे स्वरूप हैं और उनका एक स्वरूप है श्याम का। तो आइए हम भी श्याम रंग में रंग जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत येसुदास की आवाज़ में अपने पराये फिल्म से।

दोस्तों, और देख रही हूँ कि हमारे बहुत से श्रोता जुड़े हैं और हमें ईमेल भी भेज रहे हैं। उनके ईमेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देनी है कि भाई देखो, एक बात है कि हर दिन है खूबसूरत, हर दिन नया फसाना, वाकिफ रहे जमाना ये हमने मन में ठाना। इसलिए सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई आज क्या खास है। आज है जयंती भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता अरुणा आसफ अली की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका तथा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। उनके जनहित संबंधी कार्यों और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके लिए ये शेर कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही आज है एक और जयंती हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में आकाशवाणी नाम का आधिकारिक नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था। महानिदेशक के पद पर रहते हुए देश की सभी भाषाओं और कला साहित्य की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को उन्होंने मंच दिया और हिंदी भाषा के विकास पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर भी हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म से सुन रहे हैं।

और दोस्तों देखिए, बहुत सारे हमारे पास ईमेल आ गए हैं। हमने अपने श्रोताओं से आज प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था, तो हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है ईमेल। तो पहला ईमेल है नवीन भाटिया का। नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि लास्ट 1 मंथ पहले उन्होंने गुलाब का पौधा लगाया था। अरे वाह, आप तो खुशबू बिखेरने का काम कर रहे हैं। और साबिर सिद्दीकी जी लिखते हैं कि मैंने जामुन का पेड़ लगाया था 1993 में और ये बहुत ही लाभदायक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इतना समय पहले लगाया था, अब और भी लगाइए। इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, एक पेड़ माँ के नाम, देश के नाम, तो और भी आप पेड़ लगाएं, हमारा तो यही कहना है। और चरणदास जी लिखते हैं कि हम खेती करते हैं, पूरा दिन पौधों का एक काम है। अपने पैसे से 8 साल पहले 700 पौधे लगाकर गांव में बांट दिए तथा घर में खाली डिब्बे में पौधे तैयार करके गांव में दे देते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बहुत बड़ी दौलत है। तो हमारा जो FM गोल्ड है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, और पेड़ तो हमारे लिए दौलत है ही। तो मैं पेड़ लगाता भी हूँ और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है चरणदास जी। और राधा शुक्ला का एक ईमेल है, वो कहती हैं कि बचपन में बड़ी सुंदर सी घास थी, उसे लगाया था और हमारे बड़े भैया ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। फिर हम बहुत गुस्सा हुए कि भैया खुद तो पेड़ लगाते हैं और हमारा उखाड़ के फेंक दिया। तो भाई आपने घास का पेड़ लगाया था ना, कुछ ऐसा यूज़फुल सा लगाती तो वो शायद नहीं फेंकते उखाड़ के। और बहुत टाइम हो गया बचपन के बाद, अब तो अगर आप बड़ी हो गई हैं तो फिर आप और भी वृक्ष लगाइए। तो ऐसे ही सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, ये भी हमारी नियमित श्रोता हैं। और इन्होंने भी कहा है कि भई उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और वो सुन रही हैं और वो ज़रूर पेड़ लगाएंगी। तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में। और अब आपके लिए एक जानकारी, क्योंकि मनोरंजन ही नहीं जानकारियों का खजाना भी है हमारा घर आंगन कार्यक्रम। तो अब हम समय समय पर अपने श्रोताओं को अनेक उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज जानकारी लेकर आई हूँ दिल्ली लक्ष्मी योजना की। ये योजना दिल्ली सरकार की एक महिला कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से प्रस्तावित थी, जिसे बाद में दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया। योजना के लिए पात्रता मानदंड तय हो चुके हैं, जिनके अनुसार महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो और कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की वो निवासी हो। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी आपको इन सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी।

दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद आपको सुनवाती हूँ ये प्यारा प्यारा सा गीत और दूसरा आदमी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

शहर का तब्दील होना, शाद रहना या उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी भारतीय महिलाएं वैसे तो स्वयं में संतुष्ट रहती हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें सबको साथ लेकर चलने की आदत होती है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं इस समाज से, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। महिलाएं समाज से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि समान सुरक्षा और समान अवसर की अपेक्षा रखती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बराबर अवसर मिले, उनके विचारों को सुना जाए, उनकी मेहनत की सराहना हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ।

हूँ कि महिलाएं क्या चाहती है। हर महिला का सपना होता है कि वो बिना भय के अपने जीवन के निर्णय ले सके, अपने परिवार और समाज के विकास में बराबरी से योगदान दे सके और उसकी पहचान केवल रिश्तों से नहीं बल्कि उसकी योग्यता और व्यक्तित्व से भी हो। और इसी पर ये सटीक पंक्तियाँ याद आती हैं कि देवी नहीं मानो मुझे, नहीं भगवान मानो, नारी हूँ नारी का मान होना चाहिए, काहे थाम लेते बागडोर अपने हाथ में तुम, मेरा भी तो अपना स्वाभिमान होना चाहिए। अब जब समाज महिलाओं को सम्मान, विश्वास और अवसर देता है तो केवल एक महिला ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहाँ हर बेटी, बहन, माँ और महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके। तो सहयोगी बनिए, साथ दीजिए, तारीफ कीजिए।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे, ये सुन रहे थे अभिमान फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इससे पहले आपको जो गीत सुनाया था मैंने, आँखों में काजल है, ये दूसरा आदमी फिल्म से, इसे भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने गाया था। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल। हमने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था अपने हाथों से, हमें लिखकर भेज दीजिए। तो भास्विता का मैसेज आया है हमारे पास, वो लिखती हैं, ईमेल आया इनका कि मेरी याद में पहला पेड़ मैंने शादी के बाद नाशपाती का लगाया था, जिसमें अब मीठे फल आते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिठास बांट रही हैं। गौरी शंकर जी लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम। राम राम आपको। पौधों का शौक तो बचपन से ही रहा है, बाहर तो नहीं घर में ज़रूर लगाते हैं, जैसे तुलसी है, ग्वार पाठा है, गुलाब है, गेंदा है, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर में भी पौधे लगाने चाहिए। बहुत लोग पार्क में लगाते हैं, लेकिन अपने घर में भी इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। भूमिका लिखती है, मैंने तो अपनी शादी के बाद तुलसी का पौधा लगाया है बस। मेरे पापा को पेड़ लगाने का बहुत शौक है, वो बहुत तरह के पौधे लगाए भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पौधे हम सबको लगाने चाहिए, क्योंकि भाई पौधे हमारा जीवन है, हमारी जो प्राणवायु है हमें वहीं से प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छे अच्छे ईमेल्स के लिए आपका धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं की। हम महिलाएं कुछ भी बेकार नहीं जाने देती। कभी चावल बच गए तो फटाफट मौसमी सब्जियां मिलाकर फ्राइड राइस तैयार कर देती हैं, और कभी रोटी बची तो सब्जियां भरकर स्वादिष्ट रोल बना देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बची हुई या पुरानी चूड़ियाँ मिल जाएँ तो महिलाएँ क्या करती हैं? मुझे पता है सब श्रोता जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला उपाय वो है वॉल हैंगिंग। चूड़ियों को रंगीन धागों, मोतियों और घंटियों से सजाकर आकर्षक दीवार सजावट तैयार की जा सकती है, या फिर चूड़ियों पर धागा लपेटकर पंख और मोती लगाकर सुंदर ड्रीम कैचर तैयार करें। इसके अलावा कैंडल होल्डर भी बनता है, और चूड़ियों को एक के ऊपर एक चिपकाकर आकर्षक मोमबत्ती स्टैंड भी बनाया जा सकता है। पुराने फोटो फ्रेम पर चूड़ियाँ और छोटे मोती चिपकाकर नया लुक दे सकती हैं। घर में कोई पूजा या उत्सव हो तो चूड़ियों को रंगीन धागों और फूलों के साथ जोड़कर दरवाजे पर बंधनवार की तरह सजाया जा सकता है। साथ ही जो पौधों के गमले हैं ना घर पे, जैसे हम पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उनको इस तरह से आप डेकोरेट कर सकती हैं कि भाई उन पौधों के गमलों पर चूड़ियाँ चिपकाकर उन्हें नया और सुंदर रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही त्योहारों की जो सजावट की बात आती है, तो जैसे दीपावली हो गया, तीज, करवा चौथ या रक्षाबंधन जैसे जो अवसर होते हैं ना, इन पे कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, कुछ अलग तरह की सजावट करना चाहती हैं, तो चूड़ियों से आकर्षक सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। याद रखिए, पुरानी चीज़ें बिल्कुल बेकार नहीं होती, बस उन्हें नए नज़रिए और थोड़ी सी रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। और बात चूड़ियों की हो रही है तो आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा शेर कि हाथ मलवाती हैं हूरों को तुम्हारी चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी है कलाई, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। हर एक आज की चूड़िया फिल्म से अब आपको एक मीठा सा गीत भी सुनवा देती हूँ इसी बात पे, जिसे गाया है आशा जी ने, यानी कि आशा भोंसले ने।

यूं लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, जिस पल मेरी उंगली थामे मेरा बेटा चलता है। और ये हर माँ का दायित्व भी होता है दोस्तों, जीवन के हर वय में यानी कि हर उम्र में बेटों को सही गलत बताएं। देखिए बेटियों की बात तो बहुत होती रहती है, लेकिन आज बेटों के लिए भी कुछ बेहद ज़रूरी सीखें हैं मेरे पिटारे में, जो उन्हें सिर्फ एक माँ समझा सकती है। पहली बात ये कि हर स्त्री का सम्मान करना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी, मित्र या कोई अनजान महिला हो, सबसे भला और उचित व्यवहार करना, उनसे बात करते समय अपनी शब्दावली बेहद सोच समझ कर चुनना, गलती अगर हो जाए तो माफी मांग लेना। इसके अलावा बेटों को यह भी बताएं कि कभी भी बिना खटखटाए किसी महिला, भले वो मित्र ही क्यों ना हो, उसके कमरे में नहीं जाना है, उसके पर्स बिना अनुमति नहीं खोले, अलमारियां और दराजों में भी ना जाके, कुछ जरूरत हो तो स्पष्ट बोलकर मांग लें। याद रखें, सही व्यवहार और बातचीत से हर महिला आपके साथ सहज महसूस करती है और आपसे कोई भी बात बताने में नहीं हिचकती। इसके अलावा माएं अपने बेटों को घर के काम करना भी सिखाएं, खाना बनाना, सफाई करना और अन्य जिम्मेदारियां निभाना। जरूरत पड़ने पर अपने घर की या बाहर की महिला की जो है वो हेल्प कर सके उनके कामों में, ताकि आपका जो बेटा है, अगर आप घर के काम सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन साथी बनेगा और अच्छी तरह से साथ दे पाएगा। साथ ही अपने बेटों को अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी सिखाएं। हम कहते हैं ना कि बच्चे रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि भाई रोना, दुख या डर बताना कोई कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य होने के आवश्यक गुण हैं और उन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्हें हर मानवीय भाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाएं। इसके साथ ही उन्हें समय की कीमत भी सिखाएं, रुपयों का उचित उपयोग भी सिखाएं, सच्चरित्रता सिखाएं, कृतज्ञता, स्वावलंबन और सहयोगी बने रहना भी सिखाएं। याद रखें कि एक माँ अपने बेटे को केवल चलना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन की राह पर सिर ऊंचा रखकर दूसरों का सम्मान करते हुए और अच्छे इंसान बनकर कैसे चलना है, क्योंकि हर बच्चे के व्यवहार में उसकी माँ परोक्ष रूप से शामिल होती है। माँ ही वो कलम होती है जो बच्चे के कोरे कागज जैसे मन पर अच्छी अच्छी बातें लिखती है। और इसी बात पे आपके लिए प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

और दोस्तों घरांगन कार्यक्रम में हम आपको सैर कराते रहते हैं पूरी दुनिया भर की, लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो दिल्ली में भी घूमने का एक बहुत अच्छा अवसर है। आप जा सकते हैं राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय दिल्ली में। यूँ तो हमेशा एक पारंपरिक हस्तशिल्प का बाजार वहाँ पर लगा रहता है, लेकिन 10 जुलाई से 19 जुलाई तक इस बार एक खास बाजार लगा हुआ है जिसका नाम है इंडी हाट। ये ऐसा हस्तशिल्प बाजार है जहाँ देश भर के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, टिकाऊ वस्तुएं और अनूठी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और शिल्प कला का सुंदर संगम है जहां आगंतुकों को खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो यदि आप मन बना रहे हैं यहां जाने का तो जानकारी नोट कर लीजिए कि ये बाजार 10 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक लगा रहेगा, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी और भैरव मार्ग प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रवेश जो है वो निशुल्क है। यहाँ देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, लाइव क्राफ्ट डेमो, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लोक नृत्य और लोक धुन पर आधारित गीत भी देखने सुनने को मिल जाएंगे। और आइए फिर जब लोक गीतों की बात हो रही है तो आपको एक लोक धुन वाला प्यारा सा गीत सुना देती हूँ अपना देश फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

और दोस्तों देखिए, हमारे पास एक और ईमेल आ गया है। हमारे श्रोता हैं नवीन कुमार जी, वो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तब दादाजी ने कहा था, बेटा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना। उसी दिन हमने आम का एक छोटा सा पौधा लगाया, रोज उसे पानी देते, उसकी देखभाल करते और मन ही मन सोचते कि ये कब बड़ा होगा। और सुदर्शन मुखी जी का भी एक ईमेल आया है, उन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में राम और श्याम तुलसी के पौधे लगाए हैं। आपका दिन और जीवन बहुत मंगलमय हो। आपका दिन भी और आपका जीवन भी बहुत मंगलमय हो।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से, जिसे रफ़ी साहब और आशा भोसले गा रही हैं। उनकी आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे हैं। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो सखी को अनुमति दीजिए, कल्पना का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है दिल पर रख कर हाथ ये।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन HF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी गोल्ड पर। 1:11:07 हुए हैं इस वक्त। कलाकार बेमिसाल भारतीय सिनेमा के जाने माने पार्श्व गायक जिनका जिक्र होगा आज, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए एक ऐसे गायक जिनकी मखमली आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। गजल हो या गीत, फिल्मी हो या नॉन फिल्मी, सभी तरह की गायकी से उन्होंने लोगों का मन जीता। बात कर रहे हैं गायक भूपेंद्र सिंह की। मौसम फिल्म का गीत याद है ना, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन आज भी प्रासंगिक लगता है ये गीत। उनका स्टाइल, उनका तरीका और आवाज का जादू जिसने लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह की गायकी की सत्ता को कायम रखा। महान गायक भूपेंद्र सिंह के बारे में बहुत सी बातें साझा होंगी आज आपके साथ। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जाने माने गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह। पंजाब के अमृतसर में 6 फरवरी 1940 को जन्म हुआ भूपेंद्र सिंह का। इनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह भी एक अच्छे संगीतकार थे। जाहिर सी बात है, खून में ही रहा इनके संगीत। गाने और गिटार बजाने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिलती रही अपने पिता से, और उनकी आवाज का जादू ज्यादा समय तक लोगों से दूर नहीं रह पाया। उनके सुरीले सफर का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। सबसे पहले उनकी गजलें आकाशवाणी में सुनी गईं, और इसके बाद दिल्ली दूरदर्शन में भी उन्हें अवसर मिला गायकी का। 1968 में संगीतकार मदन मोहन ने किसी कार्यक्रम में उनकी आवाज सुनकर उन्हें मुंबई बुला लिया। मदन मोहन साहब उनकी आवाज और उनके अंदाज से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी अगली फिल्म में मौका देने का ठान लिया। आगे भी बातें जारी रहेंगी, सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह से जुड़ी बहुत सारी बातें जो अभी है हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर इस वक्त हम तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं जाने माने गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह की। गायन और गिटार बजाने में माहिर भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी मिताली सिंह की जोड़ी ने फिल्म संगीत और गजलों की दुनिया में खूब धूम मचाए। गुलमोहर, शबनम, अर्ज किया है, दूरियां, तेरा प्यार, चांद परोसा है जैसी म्यूजिकल एल्बम्स के अलावा फिल्मों में भी उनकी आवाज का जादू किसी से छिपा नहीं। मिताली सिंह से भूपेंद्र जी की मुलाकात एक संगीत समारोह में हुई थी। भूपेंद्र सिंह जी को मिताली जी की गायकी ने काफी प्रभावित किया। संगीत समारोह की ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1980 में दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

में संगीत जगत के दिग्गजों ने काफी कुछ कहा है, लेकिन दिग्गज लेखक और फिल्मकार गुलजार साहब का अंदाज़े बयां ही कुछ और है। गुलजार खुद भूपेंद्र सिंह की आवाज के मुरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र की आवाज किसी पहाड़ी से टकराने के बाद बारिश की बूंदों की तरह है। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा

0: इक्कीस में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70,00,000 पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और बातें हो रही हैं जाने माने गायक भूपेंद्र सिंह की। मौसम फिल्म के गीत दिल ढूंढता है से भूपेंद्र सिंह को काफी शोहरत मिली। इनका मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया गीत हो कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, और ये भी गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। और उनके लोकप्रिय नगमों की अगर बात करें तो इन गीतों का नाम लिया जा सकता है, दुनिया छूटे यार न छूटे, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां, दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा, और भी अनेक हिट सॉन्ग्स हैं लिस्ट में उनके गाए हुए। तो चलिए सुन लेते हैं एक और बहुत ही शानदार गीत फिल्म सितारा से। आपको भी जरूर पसंद आएगा भूपेंद्र सिंह और लता।

0: लेट्स ज्वाइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
2: गीत और गजल गायक भूपेंद्र सिंह का जिक्र हो रहा है। इस वक्त सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। पत्नी मिताली सिंह के साथ उनके डुएट सॉन्ग्स भी काफी सुने जाते हैं। दो दीवाने शहर में, कभी किसी को मुकम्मल जहां, एक अकेला इस शहर में जैसे हिट सॉन्ग्स, फिल्म सत्ते पे सत्ता, आहिस्ता आहिस्ता, दूरियां, हकीकत और भी कई अन्य फिल्मों के यादगार गानों के लिए भूपेंद्र सिंह को याद किया जाता है।

गायक भूपेंद्र सिंह बॉलीवुड का वो चमकता सितारा रहे जिन्होंने अपनी गायकी से गीतों का एक अनमोल खजाना हमें सौंपा है। अपनी आवाज का दमदार जादू चलाते हुए उन्होंने अपने फैंस का खूब दिल जीता है। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गाने हमारी यादों में हमेशा हमेशा बसे रहेंगे। उनकी अनमोल आवाज, उनकी पहचान हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। इस गीत के बाद सुनिएगा उर्दू खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

मीडियम वेव 107.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 16 तारीख व दिन है गुरुवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री तंजिम दोरजी, मनपमद घोषक श्री थुतन टाशी, तकनीकी अभियंता श्री कमयांगफो और शिखा डिका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गियारी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूँ आज की हिंदी उत्कोशिका टाशी चुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

0: भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में PV सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त GDP लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है।

इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले

0: पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

0: रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अनूप जलोटा की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुप जलोटा की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसके साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले।
2: अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में चंद बांग्ला फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में चंद बांग्ला फिल्मी गीत। इसके साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर की 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे 190 माउंटेन ब्रिगेड तवंग में स्थित मेजर रोलिंगनाओ बॉब खाटिंग म्यूजियम ऑफ वेल्लोर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर मिस सानली लिगुम सिंगपो और गैलरी गाइड लपसंग चुकी से भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रामा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रलिंगनाओ बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आए हुए हैं और हम यहाँ पर मुलाकात करने जा रहे हैं यहाँ के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर सनली लिगुम सिंगपो जी से। तो सनली जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू।
1: श्रोताओं, शायद आपको याद होंगे कि इस संग्रहालय के उद्घाटन गत 31 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पाटिल, या उन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस संग्रहालय के उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आसाम के शहर तेजपुर से वर्चुअल माध्यम से

0: किया गया। तो श्रोताओं, आपने इस संग्रहालय के बारे में सुने तो बहुत होंगे और आप में से कई लोग यहाँ पर दौरे भी कर चुके होंगे, लेकिन इस म्यूजियम के बारे में विस्तार से आज हम संजय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे और आप तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, तो हम म्यूजियम में पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले प्रवेश द्वार के सामने ही देखने को मिल रहे हैं कि द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन, तो इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में संजय जी आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: आप म्यूजियम जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले सोल ऑफ इंडिया ही दिखेगा। तो इसका रीजन ये है कि सोल ऑफ इंडिया हमने इसलिए बनाया ताकि हम इंडिया को एक तरह से यूनाइट कर सके। तो हमने सोचा कि अगर हम इंडिया को यूनाइट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से सबसे अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हमारे शेयर्ड स्ट्रगल्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की जो कहानी है, उसी की मदद से हम हमारे इंडिया को ट्रूली यूनाइट कर सकते हैं। तो इसी वजह से सोल ऑफ इंडिया, जैसे ही आप म्यूजियम एंटर करेंगे तो आपको वो दिखेगा। एंड देन सोल ऑफ इंडिया पर आपको टोटल 36 कैस्क मिलेंगे। तो हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, सो होल ऑफ इंडिया से हमने कलेक्ट करके यहाँ पे सारी सॉइल रखी हुई है। ईच एंड एवरी लोकेशन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जगहों से कलेक्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने दीपा से कलेक्ट की है। दीपा पर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारा झंडा वहीं पर लहराया गया था, तो हमने दीपा से कलेक्ट की है। और फिर झारखंड जैसे जगहों से भी कलेक्ट की है, जहाँ पर नीलांबर और पीतांबर एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, तो वहाँ पर उन्हें एक पैर पर हैंग कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, तो उस जगह से भी हमने कलेक्ट की है। तो हमारे रिसर्च के द्वारा हमने उस एग्जैक्ट पैर को ढूंढ निकाला, फिर हमने उसी जगहों से कलेक्ट। तो सिमिलरली सारी सॉइल्स ऐसे ही कलेक्ट की गई है। तो इस सॉइल को हमारे एक रॉयल अरुणाचल राइडर्स, एक ग्रुप ऑफ राइडर्स है, उन्होंने पूरी इंडिया ट्रेवल कर ये सॉइल्स कलेक्ट की है। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने 25 डेज में 21 स्टेट्स कवर की है, और जो रेस्ट ऑफ द सॉइल्स है वो उनके बाइकर्स ग्रुप की कनेक्शन द्वारा यहाँ भेजी गई है।
0: जी जी, तो इस म्यूजियम के अंदर स्थित द सोल ऑफ इंडिया सेक्शन हमें ये बताती है कि हमारे इस महान देश के लिए देश भर में जहाँ जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, तो उन पवित्र जगहों से हमारे अरुणाचल प्रदेश के राइडर्स ने उन पवित्र माटी को लेकर आए, और हम आज उन सारे जगहों पर जाकर देखना तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस संग्रहालय के अंदर आकर आप उन सारे पवित्र जगहों का दर्शन कर सकते हैं। जी चलिए, तो सुन लीजिए आप, हम म्यूजियम के दूसरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप हमें बताइए कि मेजर बॉब खाटिंग, अ लाइफ ऑफ वेलियर क्या कहता है, क्या इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को ये जरूर जानकारी है कि हमारे तवांग को भारत देश में शामिल करने में मेजर रालंगनो बॉब खाटिंग जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप हमें बताएं।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर जब आप सोल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद आपको मेजर खाटिंग की जो लाइफ हिस्ट्री है, उनके बारे में, उनकी लाइफ टाइमलाइन, वो सारी आपको देखने को मिलेगी मेजर खाटिंग की गैलरी पर। तो इस गैलरी पर हमने उनकी लाइफ फेसेस रखी है, तो सारी उनकी अचीवमेंट्स, जो पोजीशंस उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, और वो कहाँ पर पैदा हुए थे वो सब। तो आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको खुद म्यूजियम पर आकर विजिट करके सब कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ, यहाँ पे आपको जब आप इस गैलरी पर आएंगे तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज आप जो उन्होंने तवांग के लिए किया था वो शायद बहुत बड़ी बात है, और वो एक बहुत महान इंसान भी थे, बिकॉज एक ट्राइबल इंसान होके उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस अपनी लाइफ टाइम में हेल्प, वो एक टीचर थे, एक सोल्जर थे, पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर वो डिप्लोमेट भी, तो उसी वजह से हमने ये म्यूजियम उनकी याद में बनाया है। और उन्हें एक्चुअली 1957 पर पद्मश्री भी मिला था, तो वो मणिपुर के पहले ट्राइबल इंसान थे जिन्हें पद्मश्री मिला था। फिर उन्होंने अपनी एंड ऑफ करियर में, बिफोर रिटायरमेंट, वो एम्बेसडर टू बर्मा की तरह भी सर्व किए थे। उस समय भी वो एक ओनली ट्राइबल फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल फ्रॉम इंडिया हु सर्व्ड एज एम्बेसडर टू बर्मा थे। एंड अगर आप आगे मूव करते रहेंगे तो आपको उनकी पर्सनल आउटफिट्स देखने को मिलेगी, उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने यू नो मेजर खाटिंग के बारे में मेमोरी शेयर करते हुए आपको देखने को मिलेगी इस गैलरी पर।
0: जी, हमें इस सेक्शन के अंदर आने के बाद ये पता चलती है कि मेजर खाटिंग ने अपने जीवन में किन पदों को प्राप्त किए थे, किन पुरस्कार को उन्होंने प्राप्त किए थे, और उनके द्वारा उपयोग किए गए चीजें, उनके कपड़े, और यहाँ तक कि उनकी असली आवाज हमें सुनने को मिलता है। और जैसे कि सनली जी ने कहा

0: सचमुच हमें ऐसा लगता है कि मेजर खाटिंग यही है और हम उनके घर आए हुए हैं। और ऐसे ही हम संडी जी के साथ बातें करते करते अब म्यूजियम के तीसरे सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है द टेकिंग ऑफ तवांग 1951। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
1: तो मेजर खाटिंग यहाँ पर 1951 पर आए थे और उन्होंने तवांग को 1951 पर ही तिब्बत से आजाद करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था, बिकॉज एट दैट टाइम तिब्बत के अंदर था तवांग, इट वॉज अंडर तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ये जो टेकिंग ऑफ तवांग गैलरी है, ये आपको पूरी कहानी इन अ वे, सो इट नेरेट्स द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही इंटीग्रेटेड तवांग इनटू इंडिया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, कौन लोग थे जो इस इंटीग्रेशन पर इन्वॉल्व थे, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। एंड दो जो लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन पे यू नो दे हैड हैंड इन दिस इंटीग्रेशन वाज जयराम दास दौलतराम, हु वाज देन द गवर्नर ऑफ असम, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू नो बिकॉज ऑफ हिम वी आर लाइक इट वॉज रिकग्नाइज दैट तवांग नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन टू इंडिया। सो ही वॉज द बिग ब्रेन बिहाइंड दिस होल ऑपरेट, दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल तवांग हिज लास्ट गिफ्ट टू इंडिया। एंड एस वी मूव ऑन, इस गैलरी पर आपको मेजर खटिंग की खुद की हैंड राइटिंग एंड अगेन इंटरव्यूज, जहाँ पे पीपल आर शेयरिंग द मेमोरीज और देयर एक्सपीरियंस, या जो उन्होंने फील किया था इंटीग्रेशन के वक्त, वो मेजर खटिंग के बारे क्या सोचते थे और तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे क्या सोचते थे, वो सारी आपको इस गैलरी पर देखने।
0: जी जी जी। अब हम म्यूजियम के अंदर यूं ही चलते हुए अब ऐसी एक मजेदार सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जिसके नाम है मोन्यूल ब्लेस्ड लैंड ऑफ द मोनपा, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं कि मोनपा जनजाति के लोग पुराने जमाने में किन चीज़ों के उपयोग करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए, पहनने के लिए, और कपड़े किस तरह से बुनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है बुद्धिज्म के इतिहास। तो इस बारे में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, और जो बाहर से पर्यटक आकर यहाँ देखते हैं उन सारे आर्टिफैक्ट्स को, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होगी कि इसे किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको जानना है तो आपको आगे डिजिटल सेक्शन की ओर बढ़ने होंगे, और वहाँ पर आपको सारे चीज़ों को उपयोग किए जाने वाले वीडियो देखने को मिलेंगे।
1: सो दिस गैलरी इज कॉल्ड द हेरिटेज ऑफ मोन्यूल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस गैलरी की एक यूनिक बात ये है कि जब आप आएंगे तो आप आर्टिफैक्ट्स को एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। यूजली आप जब म्यूजियम पर जाते हैं तो आप डू नॉट टच वाले साइन देखते हैं, पर इस गैलरी पर आप एक्चुअली टच और फील कर सकते हैं। तो आफ्टर आप वो गैलरी पर टच एंड फील करके आएंगे, उसके बाद आपको डिजिटल गैलरी देखने को मिलेगा। तो इस गैलरी के बिहाइंड थॉट प्रोसेस ये था कि आप वहाँ पर सब कुछ फील टच करेंगे और यहाँ आके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे डिजिटल कॉन्टेंट्स होंगे, तो आप यहाँ पे लाइफ ऑफ ब्रोकपास देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे आरा बनाने वाली यूटेंसिल देखी होगी, तो फिर आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आरा किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 TV पैनल्स है जहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। एनी अदर छुरपी कैसे बनती है, ब्रोकपास कैसे जीते हैं, जो आप शिंखा पहनते हैं मोनपास लोग, तो वो कैसी बनती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड एट लास्टली वी हैव यहाँ पे जो होलोग्राम, दिस इज अ टेक्नोलॉजी, उसे होलोग्राम फैन कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको एक AV डिस्प्ले देखने को मिलेगा, दैट्स ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको तोरग्या, जो यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो वो डांस फेस्टिवल और जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आई फॉरगॉट टू मेंशन, लेकिन जो मोनपा गैलरी है वहाँ पे आपको वर्चुअल रियलिटी, दैट्स VR हेडसेट्स, वो भी आपको मौजूद दिखेंगे। तो वहाँ पे हमने 3 मोनेस्ट्रीज, जो तवांग के इन एंड अराउंड सबसे पुराने मोनेस्ट्रीज की तरह जाने जाते हैं, दैट्स क्रोमतेन, किमनास और तकसंग, वो 3 गोम्पा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हमने इसीलिए रखा है क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए, एक तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज है, एंड अगर आपको वहाँ पे विजिट करना है तो इधर आपको बहुत हाइक करना पड़ता है, या फिर फूड रिस्ट्रिक्शन से आप रसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते। तो बाहर से विजिटर्स आएंगे तो अगर वो 2-3 दिन के लिए आएंगे तो एक पूरा दिन वो इन मॉनेस्ट्री पे डेडिकेट नहीं कर सकते, या फिर जो बूढ़े लोग हैं यहाँ के या बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेंथ वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके, पर उन्हें फिर भी अगर वो

0: म्यूजियम पर आएंगे तो बिना वहाँ जाए उनके मॉनेस्ट्री के दर्शन हो जाएंगे, उसी वजह से हमने वो रखा।
1: तो चलिए, हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी सेक्शन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें मेजर खाटिंग की असली स्वर सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे में बताइए।
0: सो इस सेक्शन पे इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिटल गैलरी, तो यहाँ पे आपको मेजर खाटिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो 1985 पे उनके मृत्यु के 5 साल पहले वो तवांग फिर आए थे तवांग की कंडीशन चेक करने के लिए। तभी उन्होंने आकाशवाणी तवांग जो है वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी, तो उसी इंटरव्यू के बदौलत हम ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग हम उनकी आवाज़ आज सुन पा रहे हैं, बिकॉज प्रायर टू दिस उनकी कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो कुछ मौजूद नहीं थी। तो इट्स ऑल थैंक्स टू आकाशवाणी तवांग, वी आर एबल टू लिसन टू हिज वॉइस राइट हियर इन द म्यूजियम। एंड आफ्टर आप उनकी आवाज़ सुनेंगे फिर आपको फ्लैग इन प्लान द फ्लैग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो हमने प्लान द फ्लैग इसीलिए बनाया था बिकॉज उन्होंने तवांग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर झंडा हमारा इंडियन फ्लैग गाड़ कर ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था यहाँ पर तवांग पर। तो हम हमारे विजिटर्स को वही सेम फीलिंग जब मेजर खाटिंग ने झंडा प्लांट किया था तो वो सेम फीलिंग हम उनको देना चाहते थे, उसी वजह से हमने ये सेक्शन प्लान द फ्लैग बनाया है जहाँ पर आप अपना खुद का झंडा गाड़ कर वो सेम फीलिंग शेयर कर सकते। फिर तो अभी हम टूवर्ड्स द एंड आ चुके हैं, तो आफ्टर प्लान द फ्लैग आपको पिक्चर ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सरदार पटेल एंड मेजर खाटिंग जो दो ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसके वजह से हम यहाँ तवांग पर खड़े हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उन दोनों के साथ भी फोटो ले सकते हैं। एंड लास्टली हम फिर एंट्री फॉयर पर ही आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक कोट भी देखने को मिलेगा, तो वो सेम आकाशवाणी तवांग वही सेम 1985 इंटरव्यू की है जहाँ उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप जो यूथ्स ऑफ तवांग है उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। तो आपको वो कोट दिखेगा जो मेजर खाटिंग यहाँ के यूथ्स के लिए छोड़ कर गए थे।
1: जैसे कि सनली जी ने म्यूजियम के अंदर चलते चलते हमें इस म्यूजियम की विशेषताएं के बारे में बताएं, तो हमें काफ़ी अच्छे लगे इस बारे में जानते हुए। और अब हम वापस एक बार प्रवेश द्वार के सामने पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम यहां से अभी जा नहीं रहे हैं बल्कि हमें कुछ और सेक्शन के बारे में और जानने हैं, क्योंकि हमारे अभी गैलरी गाइड लोबसांग छिकी जी से मुलाकात करनी तो बाकी है। तो जी हाँ, हम अब लोबसांग छिकी जी से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के गैलरी गाइड। तो लोबसांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं जिसे मेडल सेक्शन कहते हैं, तो इन मेडल्स की क्या विशेषता है आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: ये सेक्शन जो उनका मेडल सेक्शन है, लाइक वो कुछ गिना चुना इंसानों में से था जिनको दोनों गवर्नमेंट से मेडल मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी मिला था और इंडियन गवर्नमेंट से भी मिला था। ये उनका फर्स्ट मेडल है, मिलिट्री क्रॉस मेडल, और इनको रिसीव किया था 1944 में और इसको दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर ने। और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। और उनका वर्मा स्टार मेडल है, उनको इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, और उनको पद्मश्री मिला है 1957 को, और उनको अरुणाचल रत्न भी मिला है। उनको अरुणाचल रत्न मिला है इन 2020-21 और वो दूसरा इंसान था जिनको अरुणाचल रत्न मिला। और फ्रॉम 1987 टू 2020-25 अभी तक में सिर्फ 3 ही को मेडल मिला है और वो दूसरा इंसान है। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनका अचीवमेंट सब यहाँ पे आप देख सकते हैं और उनका आवाज सुन सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे उन्हीं के सामने बैठे हो, उन्हीं का आवाज सुन रहे हो।
1: हम आगे बढ़ते हुए अब इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जिसके नाम है 1962 द वैलियंट वॉरियर्स। इस बारे में फिर हम छिकी जी आपसे जानेंगे, इस बारे में आप हमें बताएं।
2: ये जो सेक्शन है वो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है 1962 में इंडिया में वार हुआ था वो दो साइड से, एक अक्साई चीन और एक तवांग से। और तवांग में उन्होंने असम तक पूरा चाइनीज आर्मी चले गए थे, पर जो अक्साई चीन है वहां पे उन्होंने 2400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने कैप्चर कर लिया था और वो अभी भी उन्हीं के अंदर में है। और यहाँ पे एक पर्सन है उसका नाम है नीलम तिपी, वो पूरे अरुणाचल से वो अकेला ही था जिन्होंने 1962 वार में हिस्सा लिया था। ये निशी ट्राइब से बिलोंग करते हैं।

0: अगर आप यहाँ पे 1962 गैलरी में आते हो तो आपको यहाँ के 1962 वार के ऊपर में उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पढ़ने को मिलेगा, न्यूज़ कवरेज को देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे उन्होंने कौन से एरिया से उन्होंने तवांग में एंटर किया था वो सब मैपिंग देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 1962 वार में जितने भी गन्स वेपन्स यूज हुआ है वो सब आपको ओरिजिनल देखने मिलेगा। और 1962 वार में जो शहीद हुए थे और उनको जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है उन सभी को आपको देखने मिलेगा ये गैलरी में, और शहीदों के नाम। और यहाँ पे कुछ मूवीज है जो 1962 वार के ऊपर में बेस्ड है, और कुछ बुक्स जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रेजिमेंट्स है जिन्होंने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया, उनका सिंबल है। और यहाँ पे 56 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट किया था।
1: जी, तो अब हम एक बार फिर द लैंड ऑफ मोनपास के सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो इसकी जो डिजिटल सेक्शन है इस बारे में हमें सनली जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि छुकी जी आप हमें एक बार फिर यहाँ पर रखे गए आर्टिफैक्ट्स है, कपड़े है पुराने जमाने के, और बुद्धिज्म के इतिहास है, तो इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैसे कि 1951 में मेजर बोब खातिंग यहाँ आए, उन्होंने तवांग को इंडिया के साथ मर्ज किया, और उसके बाद 1962 का वार जो जवान इतने शहीद हो गए, और ये सब किसके लिए? क्योंकि ये हमारे जो यहाँ तवांग के जो लोकल है, यहाँ पे जो ट्राइब पाया जाता है मोनपा, उनके लिए, उनका कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उन यहाँ के मोनपा पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा यही मोटिव है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आए उनको दिखाए कि हमारा पहले कल्चर क्या हुआ करता था, यहाँ के लोकल जो है, यहाँ के लोग है जो क्या पहना करते थे, क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, और जो यहाँ के हमारे यहाँ के जो इवन लोकल से अगर वो भी यहाँ आते तो उनको अपना ट्रेडिशन को देखने को मिलता है, जो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा चीज़ है जो अभी सभी जगह में पाया नहीं जाता है, और कुछ ऐसा चीज़ है जो जिन्होंने यहाँ के जो अभी यूथ है उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है, यहाँ पे जैसे कि लेदर बैग है, और यहाँ पे जो कॉइन है जो पहले यूज हुआ करता था, यहाँ पे वेट मशीन है जो पहले यूज हुआ करता था, स्टोरेज बॉक्स जो अंदर से बैम्बू से बना होता है और बाहर से उसको स्किन से कवर रहता है, और यहाँ पे लोकल हाउस को 3D पेंटिंग में भी दिखाया गया है कि उन यहाँ पे लोकल घर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हैंडक्राफ्ट कैसे हुआ करता है, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे VR भी है, वर्चुअल रियलिटी, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसा मोनेस्ट्री का व्यू कैप्चर किया है जहाँ पे टूरिस्ट इजीली नहीं पहुँच पाते या उनके टूर में वो कवर कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा जगह है जैसे कि ख्रोमतिन गोनपा जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे चल के जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ही बैठ के उसको जैसे कि आप वहीं पे हो ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, और इवन यहाँ पे हमारा कल्चर जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो सब बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, और जितने भी हमारे यहाँ के 7th century से जैसे कि मेराकलामा लोटे ग्याजो उनके बारे में, मेराकलामा लोटे ग्याजो जैसे कि तवांग मोनेस्ट्री बनाए उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि 7th century में केप कलावांपो थे उनके बारे में लिखा गया है, गुरु पद्मा समावा के बारे में लिखा गया है, बुद्धिज्म कैसे आए और बुद्धिज्म से पहले हम क्या प्रैक्टिस करते थे, और यहाँ पे हम ये सब अपना जो मोनपा का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब यहाँ पे शो किया गया है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, तो आज हम आकाशवाणी तवांग की टीम यहाँ मेजर बॉब खाटिंग की वीरता का संग्रहालय में आने के बाद, यहाँ सारी चीज़ों को देखने के बाद और आप दोनों से मिलकर बातें करने के बाद हमें ये समझ में आती है कि मेजर खाटिंग ने तवांग को भारत में शामिल करने में कितनी कठिनाइयों का सामना किया और उनके कितने बड़े योगदान हमारे लिए रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत के बदौलत आज हम अपने आप को पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम भारत के सबसे सुंदर जिला में से एक तवांग से हैं, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनके योगदान को हमेशा के लिए याद रखना है, और उनके सारे चीजें, उनके सारे यादें इस म्यूजियम में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और हम तवांग वासी मेजर खाटिंग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना 190 माउंटेन ब्रिगेड तवांग में स्थित मेजर रालिनो बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेलोर के म्यूजियम कोऑर्डिनेटर

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द फिल्म केदारनाथ से। अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में इस गीत को संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

अभी आपने सुना फिल्म जबरिया जोरी से गीत दिया सरदेसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाज में गीतकार थे रश्मि विराग व संगीत था तनिष्क बागची का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म राबता से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म सूर्यवंशी से गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य व संगीत था प्रीतम का। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे तो ची रैना, रेखा भारद्वाज, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म ही जवानी है दीवानी से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत उस संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में फिल्म केसरी से गीत। गीत को शब्द व संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे निरंजन अयंगर द्वारा शब्द फिल्म माय नेम इज खान से। राहत फतेह अली खान और शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान और लॉय ने।

अभी आपने सुना फिल्म मौसम से गीत शाहिद मालिया की आवाज में गीतकार थे इरशाद कामिल व संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल, राग है हंसा ध्वनि व तबले पर संगत दिया है शारिफ अहमद खान ने। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

पहले मुख्य समाचार। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्र सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित 4 नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। भारत में म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पंगसु पास में पुनः शुरू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE की तीसरी भाषा 5वीं या 6वीं कक्षा में शुरू करने का सुझाव दिया। और फुटबॉल में मौजूदा चैंपियंस अर्जेंटीना में अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में कल रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। अब अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर

0: कर लिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोवाल ने कहा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा है कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,000,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों के साथ साथ भर्ती एजेंसियों में सुधार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रगतिशील समाज को सबसे बड़ा मानदंड होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कला, शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के युवाओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रातादी, पापुमपारे और कामले जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पिछले 24 घंटों के दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अपर सियांग जिले में अब तक 15 भूस्खलन, भारी वर्षा से 7 घटनाएं और 4 बाढ़ की स्थिति दर्ज की गई है। ये घटनाएं जिले के मारियांग, सिरगाम, कोरांग, दामरो, लागरू, आरिक, गत, पालिंग और जेंगंग सर्कल के अंतर्गत जानबो, बोमदो और पोनरुंग क्षेत्रों में हुई है। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में लाइमकिंग, नाचो, सीयूम और दापोरिजो सर्कल में 3 भूस्खलन, 3 बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें बीदाक, रेडिंग कैंप, माजा, डेरी, राखमी, जिंगमुरी, रानपोरिजो और कोरारिजो भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा क्रातादी जिले के ताली सर्कल स्थित ताली नगर में 2 भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पापुमपारे जिले के किमिन तथा कामले जिले के रागा सर्कल के टिकरिजो गांव में भी 1-1 बार की घटना दर्ज की गई है। इस बीच कई पान्योर जिले में अब भी 52 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, संपर्क व्यवस्था और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार संशोधित दिशा निर्देश शीघ्र प्रस्तुत करने तथा धनराशि की आवश्यकता की समय रहते जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को योजना विभाग के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने, समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा सभी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित 4 नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित जिला प्रशासनों द्वारा अब तक की गई प्रगति का आकलन किया और नए शहरी स्थानीय निकायों ULB के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। भारत म्यांमार सीमा व्यापार आगामी 20 जुलाई से अरुणाचल प्रदेश के पांगसू पास पर पुनः शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 6 वर्षों से अधिक समय के बाद पांगसू पास खोलने से सीमा क्षेत्रों में लोगों के लिए व्यापार, आजीविका और आपसी जनसंपर्क का

0: एक महत्वपूर्ण माध्यम फिर से बहाल होगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए व्यापारिक संगठनों, स्थानीय प्रशासन तथा म्यांमार के संबंधित पक्षों सहित सभी हितधारकों को बधाई दी जिनके सामूहिक प्रयासों से यह संभव हो सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्र सुरक्षा की एक ही दिशा में आगे बढ़े। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा है कि उन्नत अवसंरचना हमेशा के विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने यह इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री सिंह ने कहा है कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंग ला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: अब खेल जगत की खबरों के साथ है जागृति सिंह।
2: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला के मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों इसे आसानी से अपना सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Mr. Doval highlighted the BIMSTEC bring together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion. Mr. Doval also highlighted the importance of stronger cooperation among BIMSTEC member countries to address emerging security challenges and promote regional development. Defence Minister Rajnath Singh has emphasized the government's endeavour is to build an India where borders are not only secured but also the most connected. He said, the government is ensuring that development and national security progress are on the same path. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said, the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream. The Supreme Court today directed all states and union territories to formulate and implement a comprehensive policy for

0: मीडियम वेव किलोहर्ट्स के चलाने खेले थी मीटर कैनन के बिचनिस का ओज आकाशवाणी तवंग बुर लंगे थामा नुबदेक सुजलंग उनी दा नमिन नो तो आकाशवाणी तवंग देश नुबदेक मनपक लेरम बानंग चुदुर लेरम संगन लंगे थामा शल नदा चे थुतन तशी सी चमरी तशी दिले ये शुदुर देशी चिलंग तुंग खेल क्रोलो छिंद दुनपक तरिक चिग्रो बोई गलो नितों कैनन कैने चुकसुम रब ने मेता लोक बोई दब रूपक सस नई रेजा फुरपी इंबुर आकाशवाणी तवंग लेरम बानंग एफ एम फ्रिक्वेंसी कैनन ब्ली मेगा हर्ट्स गये सन्न तो इंबुर लंगेनों दा मनप लेरम को दाम्प नम थर लेरम चित को चुदुर देश उद लेरम आ जैसे चेनबो शिवला से जे नौ चंजु चेनमो टुलकु तंजिन गुमेरम पचिसी मनके गा क्यूरिया दशे नौ दंग सन मैजिक मर मुथिया सन नंसा
1: मला चिर शिवनी कई जो मशीन दे तो शुभुक जनरेशन नंग वाई
2: ये जो चे सरमदा
1: सिया संजय से जब सुखे हो सलो ना संजय ने सुलो ने वरे ला इजिक से दादा ने
2: लबदा ये ने कॉलेज ने से ने उड़ना ने ना शुभ लोपचिन ना ये जो वरे ला
1: शुभ लोपचिन ये ना यं कांबो ठावे यो अन्य यो मध्यमनों में

निजी में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुखा। कार्यक्रम जरुखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरुखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदुन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे लामा थुप्तेन वांगचू और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल के 5वीं कक्षा की छात्रा दुंडुप वांगमू दोमगे से कविता। कविता का शीर्षक होगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत आशा भोसले और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म किस्मत से आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में गीत। फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गीत। फिल्म गाराना से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। फिल्म तुम्हारी कसम से आशा भोसले और मुकेश की आवाज में गीत। फिल्म बातों बातों में से आशा भोसले।

और किशोर कुमार की आवाज में गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत और फिल्म ममता से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:50 पर रीजनल न्यूज 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत फिल्म 83 से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुने हमारे केंद्र से कल यानी 17 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम वंदना जिसमें आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और मनहर उदास की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जिसमें आप आनंद ले सकेंगे मायूक हाजरिका की आवाज में चंद असमिया आधुनिक व फिल्मी गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात जिसमें आप सुन सकेंगे दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग की 5th सेमेस्टर की छात्रा नीलम दारजी से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म चक दे इंडिया से हेमा सरदेसाई की आवाज में गीत, फिल्म दिल धड़कने दो से सुनिधि चौहान की आवाज में गीत, फिल्म महाराज से मोनाली ठाकुर की आवाज में गीत और फिल्म निर्जा से कविता सेठ की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म कबीर सिंह से तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की आवाज में गीत, फिल्म कपूर एंड सन्स से आर्को की आवाज में गीत, फिल्म गोलमाल अगेंस्ट से अरमान मलिक की आवाज में गीत, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत, फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म गुड न्यूज से रोचक कोहली लव और आकाशा की आवाज में गीत, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शेखर राव जियानी सलीम मर्चन और नीति मोहन की आवाज में गीत और फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग जिसमें आप सुन सकेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन। 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5 बजे 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री थुपतेन टाशी से 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम जिसमें आप सुन सकेंगे लुमला के खारतियांग बस्ती से लामा चंबा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे जिसमें आप सुन सकेंगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितियंग
की तीसरी कक्षा की छात्रा तेंजिन ईटोन से एक कविता का शीर्षक

子が思考。कल शाम 7 बजकर 11 मिनट पर कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत संगीतकार जतिन ललित द्वारा संगीत पर चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म सिलसिला है प्यार का से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गीत, फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से उदित नारायण की आवाज में गीत, फिल्म प्यार कोई खेल नहीं से कुमार सानू की आवाज में गीत, फिल्म मोहब्बतें से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में गीत, फिल्म कुछ कुछ होता है से उदित नारायण अलका याग्निक और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गीत, और फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर की आवाज में गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत, फिल्म केसरी से बी पराग की आवाज में। कल रात्रि 8 बजे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि के ठीक 9 बजे न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मोनपा में।

आकाशवाणी तवांग लंगे चांगमा नब्दु चुजे ग्रोक कुन कर्म खेलोनी द शेदन लिरम चितको चुदुर देश उद लिरमा लामा थुपतन वांचुसी क्रिस्तनो उन्दगिन सन्नासा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशीय तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी कोयल।

0: auditorium was opened at 5 p.m. by the head priest in the presence of the chief priest, who then lit the ceremonial lamp. Special rituals and regular pujas will commence at 5 a.m. tomorrow, the first day of the Karkidakam, and will continue until the temple closes on July 21st. The United States intensified its strikes on Iran early this morning, hitting targets for the north, as American forces also fired into a ship. The U.S. accused the ship of trying to break its naval blockade on the Islamic Republic. Iran retaliated with missile and drone fire targeting U.S. allies in the region before dawn and warned its attacks may escalate. Iranian officials said recent U.S. strikes have killed more than 35 people and injured over 300 others. In men's cricket, India were 111 for 3 in 20.3 overs against host England in the second one-day international of the three-match series in Cardiff when reports last came in. Early England won the toss and opted to field, India leading the series 1-0 after defeating hosts by 6 wickets in the first one-day in Birmingham on Tuesday. And that is the end of this news bulletin.
1: दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम पोएम ऑफ द डे। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा दंडु बंगबुदोंगे से एक कविता। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: नमस्ते, मेरा नाम दंडू बामोदंगे है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है एलडी स्कॉलर्स होम। मेरा कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का रचनाकार है हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस बढ़ता है, चल कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, टुकिया सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं साहस मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना इतिहास इसी हैरानी में, मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नदी चैन को त्याग तुम, संदेश का मैदान छा कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जे जा कर नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना एलडी स्कॉलर्स होम स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा दंडू बोंगमुदोंगे से एक कविता। कविता का शीर्षक था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ आज का कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे आशा भोसले और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म किस्मत से आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में। शब्द रचना एस एच बिहारी के, वसंगीत है ओपी नैयर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी व संगीता एस डी बर्मन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अन्य के अंतर्गत आशा भोसले और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के टाउन केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म गाराना से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। शकील बरायोनी के लिए इस गीत को संगीत से सवारा है रविशंकर शर्मा ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना आशा भोसले और मुकेश की आवाज में फिल्म तुम्हारी कसम से। गीत गीतकार थे आनंद बख्शी व संगीत था राजेश रोशन का। आप सुन रहे कार्यक्रम एक और अन्य के अंतर्गत आशा भोसले और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्म गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत इस संदेश के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम एक और अनेक का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बातों बातों में से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। योगेश कलकी इस गीत को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम एक कुरानी के अंतर्गत आशा भोसले और अन्य कलाकारों की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तमाम केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दिल तेरा दीवाना से। शब्द रचना है शैलेंद्र की, वसंगीत है शंकर जयकिशन का।

फिल्म दिल तेरा दीवाना के गीत के साथ कार्यक्रम एक और अन्य के ही पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटेरिएट के प्लानिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर, प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र PM डिवाइन तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP चरण एक एवं चरण दो के तहत संचालित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राज्यपाल में चल रही परियोजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति, धनराशि के उपयोग, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के उपायों पर विचार विमर्श की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवसंरचना विकास राज्य सरकार के समावेशी एवं सतत विकास के दृष्टिकोण को प्रमुख आधार बनती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ईटानगर में आज आयोजित एक समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT परीक्षा 2025 के कुल 111 सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों के साथ साथ भर्ती एजेंसियों में भी सुधार को सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रगतिशील समाज का सबसे बड़ा मानदंड है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने कला, शिक्षा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के युवाओं का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। मॉनसून से होने वाले नुकसान की रिपोर्टिंग और आपदा तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में दापोरिजो स्थित जिला सचिवालय के उपायुक्त कक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों से मॉनसून के दौरान अपने अपने कार्यक्षेत्र में मौजूद रहने तथा फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों को भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध, बुनियादी ढांचे के हुए नुकसान तथा अन्य आपात स्थितियों की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए, ताकि त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की जा सके। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर सियांग, अपर सुबनसिरी, क्रादादी, पापुमपारे और कमले जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की पिछले 24 घंटों के दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अपर सियांग जिले में अब तक 15 भूस्खलन, भारी वर्षा से 60 घटनाएं और 4 बार की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में लाइमकिंग, नाचो, सीयूम और दापोरिजो सर्कल में 3 भूस्खलन और 3 बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गई। इसके अलावा क्रादादी जिले के ताली सर्कल स्थित ताली नगर में 2 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। पापुमपारे जिले के किमिन तथा कमले जिले के रागा सर्कल के तेक रिजो में 1 बाढ़ की भूस्खलन और की घटना दर्ज की गई है। इस बीच कई पंजौर जिले में अभी भी 52 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा बजट घोषणा 2026-27 के अंतर्गत घोषित प्रमुख योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति तथा परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में तेजी लाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, संपर्क व्यवस्था और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बालो राजा ने ईटानगर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में राज्य के जीरो, नामसाई, आलो और तवांग में प्रस्तावित 4 नए नगर पालिकाओं के गठन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित जिला प्रशासन

फिल्म 83 के इसी गीत के साथ कार्यक्रम देशभक्ति गीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म कर्ज से कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है संजीव दर्शन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है ओल्ड मार्केट तवंग से आप है लोपसंग की दर्जी के संग पामा डो दानो और वासु।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म आन मिलो सजना से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, वसंगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है बजोनिया जलोन उत्तर प्रदेश से, आप है सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

श्रोताओं, आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शर्मिली से। शब्द रचना है नीरज के व संगीत है एस डी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है चंडीगढ़ से आप है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म संघर्ष से लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बारायूनी के लिए इस गीत को संगीत से सवारा है नौशाद ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है मजनू कटेला दिल्ली से। आप है कमाल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से। आप है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में फिल्म आतिश से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। इस गीत की हमें फरमाइश किए है हालिम आसाम से। आप है ज्योति सुरेन।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शो की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ F9।

0: काजो का लेकर अपने को होस्ट प्रशांत के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रशांत, फुटबॉल विश्व कप का महाकुंभ अब अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया और रविवार को अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके अलावा और किन खेल खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी?
1: नवीन स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में अपने लिसनर्स को इंग्लैंड के कार्डिफ के मैदान में ले चलेंगे, जहां इस समय दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत और इंग्लैंड आमने सामने है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने नया इतिहास रचा, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं नवीन, आगामी एक दिवसीय और T20 वर्ल्ड कप के नए क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर भी बात होगी।
0: शांत, क्रिकेट के मैदान से निकलकर हम अपने लिसनर्स को जापान लिए चलेंगे, जहां बैडमिंटन कोर्ट पर पीवी सिंधु लगातार शानदार प्रदर्शन कर रखी हैं और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।
1: लेकिन नवीन, आज की सबसे पहली खबर रहेगी बॉक्सिंग के कोर्ट से, जहां भारत ने स्वर्ण और रजत तो दोनों पदक अपने नाम किए हैं।
0: तो अगले 15 मिनट तक बने रहिए मेरे और प्रशांत के साथ और नजर उन तमाम खबरों पर जिसके साथ आपको इंतजार रहेगा। खेल प्रेमियों को क्या है उनका सरोकार आपसे।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से नवीन, जहां भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए। नवीन, अगर पुरुषों के अंडर 23 वर्ग की बात की जाए तो विश्वनाथ, सुरेश और गंगा ने स्वर्ण, जबकि वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। विश्वनाथ ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जापान के डाइची इवाई को और गंगा ने कजाकिस्तान के लाटन बुरान बेग को 3-2 से हराया। नवीन,
0: वहीं प्रशांत, वंशज ने बहादुरी दिखाई लेकिन उन्हें उज्बेकिस्तान के इल्मे खोवाजून एर्गोशेव के हाथों 1-4 से हारकर मैच अपने हाथ से गंवाना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लेकिन अगर अंडर 19 पुरुष फाइनल की बात करें तो भारतीय बॉक्सरों ने प्रशांत जबरदस्त कोशिश की, लेकिन सिर्फ हमें सिल्वर मेडल ही मिला। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य उज्बेकिस्तान के एलियोर रुस्तमोव से 5-0 से हार गए। वहीं 90 किलोग्राम वर्ग में शुभम राजपूत को उज्बेकिस्तान के अजदबेक सुल्तान बोएव के हाथों 0-0 के मुकाबले 5 शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि लगातार भारत बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करता आ रहा है और जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि भारत आगे और शानदार प्रदर्शन करेगा और कई पदक अपने नाम करेगा।
1: बिल्कुल नवीन,
0: इससे पहले अगर बुधवार की बात करें, कल की बात करें, तो इंडोनेशिया में हुए फाइनल में अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन हुआ। अंडर 19 और अंडर 23 श्रेणी में कुल 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। और अब आपको हम लिए चलते हैं सीधा कार्डिफ, जहां पे इसमें दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है और भारत ने ताजा समाचार मिलने तक क्या स्कोर बना लिया है प्रशांत?
1: 38वें ओवर में नवीन 7 विकेट पर 201 रन बना लिया है भारत ने।
0: 38वें ओवर में भारत के 201 रन बन चुके हैं, 7 विकेट प्रशांत गिर चुके हैं। शुरुआत मैच की बहुत अच्छी हुई थी और हमें लग रहा था कि भारत एक लंबा स्कोर करेगा, लेकिन एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते गए। जिस तरह से ईशांत का विकेट गिरा और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब लग रहा था कि शायद हैट्रिक भी हो जाएगी।
1: जी बिल्कुल नवीन, और भारत टीम जो है इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ भी उतरी है। केएल राहुल के स्थान पर ईशान किशन को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया है।
0: वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम में भी 2 बदलाव किए गए हैं। शाकिब महमूद और एटकिंसन को जॉस्टन और लियाम जासन की जगह टीम में शामिल किया गया है। और भी कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं प्रशांत।
1: जी बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नवीन 8,000 रन पूरे कर लिए हैं। रोको ने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में, यानी आज के मुकाबले में ही किया है। नवीन, यह भारत के लिए सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक रन जोड़ने के मामले में 3rd नंबर की जोड़ी बन गई है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली सबसे आगे हैं,
0: जिन्होंने सभी फॉर्मेट पे कुल मिलाकर 12,400 रन जुटाए हैं। थोड़े और आंकड़ों की प्रशांत अगर बात करें तो तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लगभग 11,000 रन जोड़े हैं और इसी लिस्ट में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की जोड़ी 4th स्थान पर रखी है।
1: बिल्कुल, और तीनों फॉर्मेट में इन्होंने करीब 7,500 रन से ज्यादा रन जुटाए और वीरेंद्र सहवाग और मौजूदा जो कोच है भारत के गौतम गंभीर ने भी 7,000 से ज्यादा रन जुटाए हैं इस फॉर्मेट में। नवीन,
0: भारतीय टीम की बात करें तो पहला मैच भारत ने 1-0 से जीत लिया है। दूसरे मैच में भारत लगातार कोशिश कर रहा है। 12 ओवर इस समय लगभग बचे हैं

0: प्रशांत 201 रन है, कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं? हालांकि इस समय भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज इस समय मैदान पर हैं, उम्मीद हमें ईशान किशन से थी, उम्मीद हमें और भी बहुत सारे बल्लेबाज से थी, लेकिन शायद वो खरे नहीं उतरे हैं।
1: बिल्कुल नवीन, और अभी इस वक्त श्रेयस अय्यर जो कि T20 भारत के कप्तान भी है, वो एक तरफ से डटे हुए हैं और बहुत मजबूती देकर भारत को 200 के पार पहुंचा है, और अगर भारत 250 तक पहुंचती है नवीन, तो एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है।
0: प्रशांत, खेल प्रेमियों को और खासकर अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो उन्हें अक्षर पटेल और उनके जोड़ीदार वॉशिंगटन सुंदर पे आज एक खासी नजर उनकी रही होगी, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में एक शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार दोनों ही बल्लेबाज नहीं चले।
1: बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 गेंदों का सामना कर 2 रन बनाए और अक्षर पटेल महज 1 रन ही बना सके, और उधर शिवम दुबे जो खाता भी नहीं खोल सके, लगातार T20 में अच्छा प्रदर्शन रहा है नवीन शिवम दुबे का, लेकिन एक दिवसीय में वो छाप नहीं छोड़ सके हैं अब तक।
0: मुझे लग रहा है टीम प्रबंधन ने यहां कुछ अलग तरह से टीम उतारी है और कुछ अलग तरह से बैटिंग ऑर्डर रखा है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर से एक पायदान ऊपर आएंगे, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा पिछले मैच में, तो शिवम दुबे को नीचे खींचा गया। शायद इससे ऐसा लगता है कि उन पर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा हो, क्योंकि लगभग 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा हमारी नजर रहेगी एक और क्रिकेट से जुड़ी खबर पर, वो है कि ICC ने कल नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है। इनका ऐलान एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक के बाद किया गया।
1: नवीन, वनडे और T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से, T20 में सुपर 10 से तय होंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला गया है। सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट,
0: विशाल जी।
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी एक दिवसीय और T20 के लिए नए फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2027 का एक दिवसीय विश्व कप और 2028 का T20 विश्व कप नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमों के साथ नया 3-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा। इसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे, वहीं T20 विश्व कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। एक दिवसीय विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें रैंकिंग की आखिरी 3 टीमें राउंड रोबिन फॉर्मेट में आमने सामने होंगी और एक टीम दूसरे राउंड में पहुंचेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें ही होंगी। 6-6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ टीम तीसरे राउंड यानी सुपर 7 में पहुंचेगी। इसके बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इनकी विजेता टीमें फाइनल खेलेंगी। वहीं 2027 में एक दिवसीय विश्व कप में कुल 14 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इन 14 टीमों में से 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमें राउंड 1 खेलेंगी, जिसमें सिर्फ एक टीम अगले दौर में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमें 2 ग्रुप में खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप 3 और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर एक टीम सुपर 7 में पहुंचेगी। सुपर 7 की 7 टीमें राउंड रॉबिन मुकाबले खेलेंगी, जहां से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल के जरिए चैंपियन तक का सफर तय करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रशांत, एक नया फॉर्मेट आया है क्रिकेट के मैदान पर, अब देखना होगा कि ये जो नया फॉर्मेट है ये किस तरह से दर्शकों को, खेल प्रेमियों को लुभाता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेट की लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं।
1: बिल्कुल नवीन, जो नए जो एसोसिएट नेशन है उनको भी बराबरी का मौका मिले और अच्छा प्रदर्शन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बहुत ही लोकप्रिय और रोमांचक बनाने के मद्देनजर इसको ऐसा किया गया है नवीन।
0: और प्रशांत, लगता है कि खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और खेल नीरस ना हो जाए, क्योंकि जितना क्रिकेट इस समय देखा जा रहा है और जितना क्रिकेट इस समय हो रहा है खासकर क्रिकेट नेशन देशों में, तो उससे लगता है कि कहीं कहीं लोकप्रियता कम हो रही थी, और शायद ये बदलाव क्रिकेट के लिए भी अच्छे होंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: और अब नजर करते हैं सीधा हम फुटबॉल यानी कि फीफा विश्व कप पे। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है।
1: नवीन, अर्जेंटीना 86 मिनट तक कोई गोल नहीं कर सकी, 0-1 से पिछड़ रही थी। इसके बाद आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने अपनी किस्मत बदल दी और 2 गोल दागकर जीत हासिल की। अब फाइनल में उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा।
0: अगर हम अर्जेंटीना के खेल पे नजर डालें, पिछले क्वार्टर फाइनल में नजर डालें और सेमीफाइनल की बात करें, तो प्रशांत लगता है कि अर्जेंटीना का डिफेंस जो है वो कमजोर हो गया है। अर्जेंटीना के खेल की बात करें तो लगातार उनका अटैकिंग खेल होता है।

0: उनके लगता है कि गोलकीपर को छोड़कर उनके 10 के 10 खिलाड़ी दुश्मन टीम पे आ जाना चाहते हैं और गोल करना चाहते हैं, और शायद यही कमी रह जाती है। अगर स्पेन के साथ मुकाबले की बात करें तो स्पेन ने उनके डिफेंस को भेदते हुए गोल कर दिया और लगातार 87 मिनट तक उन पर प्रेशर बना रहा।
1: जी बिल्कुल,
0: सुनते हैं इस पर रिपोर्ट सर फिरोजी की और फिर और कुछ जानकारी इस मैच के बारे में।
2: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अटलांटा में एंथनी गॉर्डन के 55वें मिनट के गोल से इंग्लैंड फाइनल की ओर बढ़ता दिख रहा था। हैरी केन के लंबे पास पर अर्जेंटीना का डिफेंस पूरी तरह क्लियरेंस नहीं कर सका और एंथनी गॉर्डन ने बॉक्स से आसान फिनिश किया। ये टूर्नामेंट में गॉर्डन का पहला गोल था और इस गोल के साथ ही इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया है। इसके बाद अर्जेंटीना ने अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया। टीम को 86वें मिनट में कॉर्नर मिला। लियोनेल मेसी ने शॉर्ट कॉर्नर खेलकर गेंद एंजो फर्नांडिस को दी। फर्नांडिस ने करीब 25 गज की दूरी से शॉट लगाया। इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। फिर इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में मेसी ने फिर कमाल कर दिया। उन्होंने दाईं ओर से बॉल बॉक्स में भेजी। सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर लोटारो मार्टिनेज डिफेंडरों से आगे निकले और शानदार हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। अर्जेंटीना ने 7 मिनट के भीतर मैच पलटते हुए 2-1 से बढ़त बना ली और फिर मुकाबले को अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
3: Argentina will play Spain on Sunday.
2: Sir Firozi, Sportscan.
1: नवीन, इस विश्व कप में अर्जेंटीना का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और अर्जेंटीना का यह 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा और टीम इससे पहले 1930 हो, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है और अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप जीत चुकी है। अब उसके पास लगातार दूसरी बार और कुल 4था खिताब जीतने का मौका होगा।
0: और प्रशांत, स्पेन की बात करें तो फ्रांस को 2-0 से हराकर 16 साल के अंतराल के बाद फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने प्रवेश किया है और स्पेन फीफा विश्व कप के एक ही संस्करण में 6 बार क्लीन शीट रखने वाले इतिहास की पहली टीम बन गई है। और खास बात यह कि 2018 से 2021 के बीच 37 मैचों की अजेय लय के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। और अब बात बैडमिंटन की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सुनते हैं करिश्मा की रिपोर्ट।
4: 2019 की BWF चैंपियन सिंधु ने दूसरे राउंड में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन के खिलाड़ी पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने सिर्फ 35 मिनट का समय लिया और 21-16, 21-14 से मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही चीन के खिलाड़ी हान के खिलाफ सिंधु का रिकॉर्ड भी बेहतर होकर 8-1 हो गया। पहले गेम में हालांकि शुरुआत धीमी रही, लेकिन बाद में सिंधु ने अपनी लय हासिल की और अपना दबदबा बनाते हुए 21-16 से पहला गेम अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम में भी वही लय बनाए रखी, 8-0 की बढ़त हासिल की और हान यू को वापसी का कोई खास मौका नहीं दिया। हालांकि चीनी खिलाड़ी ने कुछ समय के लिए अंकों का अंतर कम किया, लेकिन सिंधु ने समय बनाए रखा, मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और शानदार जीत दर्ज की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्सकैन।
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं भारतीय पारी पर। 40 ओवर में भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 210 रन बना लिए हैं।
0: स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। ये अंक आपको हमें कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को

0: सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा

0: जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
3: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
4: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रूपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
5: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई।

0: और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over

तो ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आपकी सेवा में कल भी हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्री तंजन दोरजी, तकनीकी अभियंता शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंत स्वर्गियारी और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ आपकी उद्घोषिका टाशी छोटन को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि।